0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बीमारा मैं पाचू
0: बीमारा मैं पाचू
2: इवान लंग यू बिडो टेला लोका कामु पेने
1: इटीविनो और रेडियो

0: और मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: मन लुगा फ्लो
3: लुगा फ्लो मूव जोश मन परफेक्शन
2: चिकी कन्नू
3: क्या तेरा
2: बोला बीट
3: मिया माई
2: लांगो इन

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियों चुन के रे वेर क्वारो
0: पियों चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिडो टेला लोको कामु पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: तुम ये करे वेर क्वारो
1: अलीशानी हुई युगो
2: बीमार मैं पाचो
0: इटी युन्यो और रेडियो
3: टू पी

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो
2: Yeah, easy delivery call.
3: Rico.
4: Ruba.

0: और मैं पाजू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: Trying to get this money for the future.

0: यार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: यार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो